0: वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स का राशि जोन पार्ट टू। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि, योर इंट्यूशन इज वेयरिंग नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स एंड सेइंग लिसन टू मी। आज इनर वॉइस को म्यूट पर मत रखो। लकी कलर इज लैवेंडर ग्रे। लकी नंबर इज 27। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एनर्जी इतनी है कि या तो जिम जाओगे या अननेसेसरी डीप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दोगे। मूव योर बॉडी, मूव योर माइंड। लकी कलर इज बर्गंडी। लकी नंबर इज 9। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, वन अनोइंग डिस्प्यूट नीड्स एन एग्जिट। विन द पीस नॉट द ट्रॉफी। टाइम को बचाओ, एनर्जी को बचाओ। लकी कलर इज मस्टर्ड। लकी नंबर इज 4। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, एक्शंस आर ग्रेटर देन स्पीचेस टुडे। क्वाइट कॉन्फिडेंस, स्ट्रांग मूव्स। Somebody may be changing your mind. Good luck to them. Lucky color is charcoal. Lucky number is 11. Aquarius yani Kumbh Rashi, something didn't work. All right. You're not a failed experiment. You collected data. Version 2.0 is loading. Lucky color is ice mint. Lucky number is 33. Pisces yani Meen Rashi, your friend's choices may confuse you today. But not every chapter needs your commentary track. Trust people to walk their path. Lucky color is pearl white. Lucky number is 16. And that's it for Rashi Zone Part 2. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। मुझे अपने साथ रखो इंस्टा और एक्स पर भी। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची। That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

Mirchi. It's hot.

0: ऑलराइट जी, मेरे जाने का टाइम हो चुका है. मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रही तो मिर्ची मॉर्निंग्स. लेकिन जाने के पहले तुम्हें एक बात बताकर जाती हूँ. अपेरेंटली मैट डेमन सेज द ओडिसी हैज बीन द हार्डेस्ट फिल्म ही इज एवर वर्कड ऑन, और रीजन है डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन. अपेरेंटली ही सेड ग्रीन स्क्रीन नो, फेक बैकग्राउंड्स ऑल्सो नो. मैट शेयर्ड दैट दे एक्चुअली शॉट थिंग्स फॉर रियल इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग हेविली ऑन स्टूडियो इफेक्ट्स. मीनवाइल मैं तो यहाँ पर अपनी मीटिंग्स में बैकग्राउंड को चेंज करके प्रिटेंड करती हूँ कि लाइफ काफ़ी सॉर्टेड है. रिपोर्ट्स ऑल्सो से रियल लोकेशंस वर यूज्ड टू रिक्रिएट एंशिएंट ग्रीस, व्हिच ऑनेस्टली साउंड्स इक्वल पार्ट्स एपिक एंड इक्वल पार्ट्स प्लीज रिमाइंड प्रोडक्शन टू कैरी एक्स्ट्रा सनस्क्रीन. बट लो की देर इज समथिंग कूल अबाउट दैट ओल्ड स्कूल मूवी मैजिक, लाइक मेकिंग थिंग्स फील बिग बट एक्चुअली गोइंग बिग. और वैसे भी वेदर इट्स फिल्म्स, करियर्स, मूविंग कंट्रीज या फिर ट्राइंग टू कुक विदाउट कॉलिंग योर मॉम, समटाइम्स द हार्डेस्ट थिंग्स बिकम द स्टोरीज यू टेल लेटर. एंड विद दैट थॉट, सी यू लेटर एलिगेटर. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. अब जाने का टाइम है, टाटा बाय बाय फ्रॉम मी. यू हैव अ ग्रेट डे अहेड. और मुझे ज्यादा मिस मत करना. अगर करोगे तो इंस्टा और एक्स पर मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम. और अभी के लिए टाटा बाय बाय फ्रॉम मी. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.
1: बच्चों को यहाँ पर साउंड सिस्टम से दूर रखें.

0: on my channel.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: Mirchi, it's hot.

0: आज लाइटर खराब हो गया ना, तो माचिस इस्तेमाल करनी पड़ी और मुझे आमिर खान का जुबान से माचिस बुझाने वाला वो गुलाम वाला जो एक्ट है ना, वो याद आ गया।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. आज लोग शायद बॉलीवुड एक्टर्स और फिल्म्स उतने पैशन से फॉलो नहीं करते हैं जितना कि बैक इन 90s किया करते थे। आई रिमेम्बर कि हमारी क्लास में ना एक लड़के ने आमिर खान का ये जलती माचिस को अपनी जुबान से बुझाने वाला एक्ट किया था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को बुला लिया गया था स्कूल में, एंड इट बिकेम अ बिग डील कि सब सेक्शंस के बच्चे इसके बारे में बात कर रहे थे। और स्कूल में सच थिंग्स यूज्ड टू बिकम अ ग्रेट डील, हाँ, कि वो जो बंदा लेटर ऑन मामला शांत होने के बाद भी अगर हमें दिखाई देता था ना कॉरिडोर्स में, तो हम सब उसे देखकर पॉइंट किया करते थे कि देख देख देख वो माचिस वाला लड़का, एज इफ कोई स्कूलमेट ना हो, कोई फेमस इंसान हो गया हो। हाँ, उन दिनों में फेमस होना यूज्ड टू बी अ बिग डील। स्कूल में फेमस वही होता था जो या तो प्रीफेक्ट्स थे, या कोकरिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, या फिर कोई कांड करते थे। आज फेमस होने के लिए बस सोशल मीडिया का यूज करना आना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर भी मैंने नोटिस किया है कि ऐसी ही कैटेगरीज होती है फेमस होने के लिए। जो लोग फिलॉसफी और लाइफ के डिसिप्लिन पर रील्स बनाते हैं वो प्रीफेक्ट्स हैं, जो क्रिएटिव रील्स बनाते हैं वो कोकरिकुलर एक्टिविटीज वाले हैं, और जो क्रिंज वीडियोस बनाते हैं वो कांड करने वाले लोग हैं। चलो जी, बातें तो अभी बहुत है, तो आगे बढ़ते हैं। मिडडे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ और आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मर्डर मूवी की रिलीज के बाद इमरान हाशमी के गालों से सीरियल किसर का टैग ऐसे लगा था जैसे कि गाल पर लिपस्टिक का निशान।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और इस टैग से उन्हें नवाजा गया आफ्टर पीपल वॉच्ड हिम इन मर्डर। दिस फिल्म वॉज अ फिल्म जिसकी लोगों ने बुराई भी की थी, लेकिन फिर देखा भी, क्योंकि ये फिल्म तो हिट हुई थी यार, एंड दैट ऑफ कोर्स इज बिकॉज ऑफ द पब्लिक। दिल तो सबका था फिल्म को देखने के लिए, लेकिन दुनियादारी के चलते मूवी को अश्लील बोलना पड़ा होगा बाबू मुशाए। बट मैंने ये फिल्म आज तक नहीं देखी, पता है, क्योंकि बचपन में हमें ये देखना अलाउड नहीं थी, और बड़े होने के बाद दिस फिल्म नो मोर वॉज अ बिग डील, क्योंकि फिर तो न जाने क्या क्या मूवीज में देखने को मिलने लगा यार। हाँ, लेकिन मैंने अनफेथफुल देखी है जिसकी रीमेक वॉज मर्डर। बट आपको पता है, इमरान हाशमी को पता ही नहीं था कि उनका ये फिल्म करना उनके लिए इतना अजाब हो जाएगा कि उन्हें सीरियल किसर के साथ इतनी ट्रोलिंग मिलेगी। बताऊंगी इस बारे में मोर इन अ व्हाइल। अभी के लिए कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: इमरान हाशमी अपनी मूवी मर्डर के प्रीमियर पर अपनी फैमिली के साथ गए थे, इंक्लूडिंग हिज नानी.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड मूवी के दौरान और बाद में भी इमरान को थोड़ा टाइम लग गया ये समझने में कि व्हाई हिज नानी एंड हिज फैमिली वर ग्रंटिंग अबाउट द फिल्म एंड द एडल्ट सीन्स देयर, क्योंकि वो हकीकत से कई हजार किलोमीटर दूर थे. रीजन कि वो इंग्लिश फिल्म ही देखा करते थे एंड ही हैड नो आइडिया कि इंडियन ऑडियंस के लिए इट इज अ बिग डील. और जब पता लगा तो बहुत देर हो चुकी थी. लेकिन अपने टाइम में मर्डर जैसी बोल्ड फिल्म वॉज एन अनकॉन्शियस स्टेप टेकन टू ब्रिंग इन अ चेंज लोगों और बॉलीवुड के पर्सपेक्टिव्स में, क्योंकि ये वो फिल्म है जिसने एट दैट टाइम पीडीए और फ्रेंच किसेस के चलन को हवा दे दी. और फिर डायरेक्टर्स को एक ऑन स्क्रीन किस दिखाने के लिए दो फूलों को आपस में भिड़ाना नहीं पड़ता था बाबू भैया. और भिड़ने से मुझे याद आया मलिका शेरावत, इमरान हाशमी और अश्मित पटेल के बीच की भिड़ंत. बहुत मसाला है, आगे जो भी सुनिएगा डाइजीन लेकर सुनिएगा. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: 36x2 कितना होता है? बस उतना ही आंकड़ा मलिका शेरावत और मर्डर मूवी के मेल लीड इमरान हाशमी और अश्मित पटेल के बीच था।
2: ये नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, there was this one time जब इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके मलिका शेरावत के साथ जो ऑन स्क्रीन किसेस थे ना, they were the worst of his career since he just disliked kissing her. क्योंकि they had a fallout and not just इमरान, there was this one time जब मलिका ने अश्मित को अक्यूज किया था कि अश्मित ने उन्हें जानबूझकर पुश किया था, which was not really the case. और ये प्रूव भी कर दिया गया था सिंस आसपास और भी लोग थे, लेकिन मलिका की तरफ से कभी कोई अपॉलोजी नहीं आई टू अश्मित। सीन कुछ ऐसा था ऑन द सेट्स ऑफ मर्डर कि आती थी मलिका शेरावत और बाकी सारे यूज्ड टू खैर मनावत। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: बस यही तो चाहिए यार आज के टाइम पे, 90s वाली मोहब्बत कि यार एक बार तुमसे मोहब्बत कर ली, तुमसे प्यार कर लिया ना, उसके बाद सोचेंगे नहीं, पलट कर सवाल नहीं करेंगे कि क्यों तुमसे मोहब्बत करी। दीवाना फिल्म से दिस गाना कुमार सानू की आवाज में।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब वो धुन मेरे यारा जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए चलाई जाएगी, लेकिन मैं जानती हूँ आप हो तो बड़े कमाल के, पकड़ ही लोगे कि ये जो दो धुने मैं आपके लिए चलाने जा रही हूँ, ये दो धुने कौन से दो गानों की है। तो चलो जी, चैलेंज एक्सेप्टेड आपकी तरफ से, तो मैं देती हूँ आपको चैलेंज एंड दीज आर द दो धुन आज के लिए। तो मान ना मान करो गानों की पहचान और फटाक से डीएम करो अपना नाम, अपनी सिटी और वो दो गाने जिनकी धुने आपने अभी सुनी है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अकेले हम अकेले तुम, ये तो फिल्म का नाम था, लेकिन इस म्यूजिक को बनाते हुए अन्नु मलिक अकेले नहीं थे, क्योंकि उनके साथ साथ बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के म्यूजिक भी तो थे, जिसमें से कॉपी करके उन्होंने ये गाना बनाया।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, अन्नु मलिक कंपोज किया गया ये वाला गाना।

जब बात चली है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन मैं आपको यही सेम गाना नहीं सुनाएगी, अकेले हम अकेले तुम से ही मैं ना अपना फेवरेट ट्रैक सुनाती हूँ आपको, कमिंग अप कुमार सानू एंड अलका याग्निक की आवाज में। और सुनो, गाना सैड सिचुएशन पर है लेकिन म्यूजिक कॉम्पोजिशन इज ब्यूटीफुल, तो लिसन टू द ब्राइटर साइड ऑफ द सॉन्ग एंड एंजॉय द ट्रैक। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या आप भी अपने स्मार्टफोन्स की एडिक्शन से परेशान हैं? मैं भी यार, तो फिर क्या किया जाए?
2: आज की बात 90's के साथ।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, I think वापस टिक-टिक वाले फोन पर जाया जाए अगर हम स्मार्टफोन एडिक्शन से थक गए हैं तो। And you know what? Surveys say कि many people, including Gen Z's, have already begun to switch to these टिक-टिक वाले old school phones. But honestly, अगर मैं ऐसा करना शुरू कर दूँ ना, तो मेरी productivity by 50% ऊपर चली जाएगी। And that is quite a lot, I swear, यार। Keypad phones का जमाना कितने सुकून का हुआ करता था ना? लोग एक दूसरे से सिर्फ फोन पर बात करते थे, मतलब की बात करते थे, और बाकी फिर फोन साइड में रख दिया करते थे। जब आमने सामने हुआ करते थे तो एक्चुअली में एक दूसरे से बात करते थे, फोन पर नहीं रहते थे। याद है इमोजीज बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? दो डॉट्स, एक एस्ट्रिक्स और एक क्लोज ब्रैकेट से एक आंख मारता हुआ इमोजी बनता था। अगर हम वापस टिक टिक वाले फोन्स पर आ जाएं तो क्या होगा? इज इट अ थम्स अप और अ थम्स डाउन आइडिया? डीएम करके बताओ मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा। अभी के लिए ये अगला गाना आ रहा जो कि मुझे ये याद दिलाती है कि पहले छोटी छोटी रातें भी लंबी हो जाया करती थी, लेकिन थैंक्स टू स्मार्टफोन्स अब तो लंबी लंबी रातें भी फोन पर कहां कट जाती हैं पता ही नहीं लगता है। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट। सारा जमाना
1: सारा का दीवाना, मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: डियर चिज्जी,
3: यादों को चिट्ठी।
2: बचपन में तुम हमारे घर से स्टेप आउट करने की वजह हुआ करती थी। अगर कोई बड़ा पूछता कि कहाँ जा रही हो तो जवाब एक ही आता था, चिज्जी लेने जा रही हूँ। और तुम चिज्जी भले ही टर्म एक थी लेकिन तुम अम्ब्रेला टर्म थी। तुम्हारे अंडर भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें आ जाती थी, नटखट, इलू इलू, टॉफी या मीठी सिगरेट्स या फिर चूरन, कई सारे ऑप्शंस थे। और अगर कोई और लंबी दुकान की तरफ काम से जा रहा होता था ना, तो 2 या 5 रुपए उसे पकड़ा कर बस इतना कहते थे कि सुन, मेरे लिए भी चिज्जी लेते आना ना। और उस बजट में जो भी आता वो अगला इंसान हमारे लिए वही खरीद ले आता, विदाउट अस एक्सप्लेनिंग कि लाना क्या है। क्या अंडरस्टैंडिंग थी हमारे बचपन की तुम्हारे नाम के साथ। आज देखो वक्त बदल गया है, अब चिज्जी से हमारा दिल नहीं बहलता। और चिज्जी की क्या ही बात कहूँ, एप्पल का फोन भी आ जाए ना तो भी कुछ दिनों बाद दिल कहीं और ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बोरियत के मारे। लेकिन तुम्हें जब पालिया करते थे ना बचपन में, तो लगता था कि साल भर की खुशी आ गई है हमारे पास। छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशी मिलने का तुम क्लासिक एग्जाम्पल हो हमारी लाइफ में, हमारे बचपन में हमें चेयरअप करने के लिए। थैंक यू, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज का जादू है कैसेट के साइड बी के चौथे गाने में।
2: मिर्ची 90s कैसेट,
1: द म्यूजिक मेरे बचपन का प्यार वॉज नॉट शालीमार, बट ये गाना यार। ग्रीनरी के बीच बच्चों से घिरे हुए राहुल और अंजलि का छिपते छिपाते पनपता प्यार। जब कुछ कुछ होता है मैंने पहली बार देखी थी ना, तब काजोल के टॉम बॉय लुक के बाद काजोल का ट्रांजिशन देखकर राहुल कम और मैं ज्यादा एक्साइटेड थी। और इस गाने को देख देख कर ना मैं खुद इतनी खुश थी कि ये अब राहुल और अंजलि को प्यार हो रहा है, एज इफ राहुल मेरे ताऊजी का ही बेटा हो। बट कुछ भी कहो यार, ये गाने का म्यूजिक जहाँ सुनने को मिलता है ना, आप तो डेफिनेटली समझोगे कि कुछ कुछ होता है। यही गाना कमिंग अप फॉर यू, लेकिन नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, और यहाँ के अलावा अगर मुझे कहीं ढूंढना है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ही बाय द नेम मिर्ची सारा। इसी के साथ ये अगला गाना आ रहा, मिलेंगे हम सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

Itchy. It's hot.

0: मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी। चांद ने कहा अबे गधे, इतनी ऊपर से मुझे क्लियरली दिखता ही नहीं।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और एक्चुअली मैंने ना ये जोक पहले पढ़ा था, उसके बाद मुझे ये गाना पता चला था कि इस तरह का कोई गाना एग्जिस्ट करता है। अब्दुल्ला फिल्म का गाना, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने लिखा, मोहम्मद रफी की आवाज। और ये गाना ना एक्चुअली एस डी बर्मन साहब की कॉम्पोजिशन है और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा था। लेकिन जिस फिल्म के लिए ये गाना बना था वो फिर बन नहीं पाई और ये गाना आर डी बर्मन के पास पड़ा था। फिर संजय खान साहब, जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है, उन्होंने ये गाना सुना और इसमें कुछ बदलाव करके फिर दोबारा से रिकॉर्ड किया गया। चलिए इसी बात पे अपने चांद से खूबसूरत चेहरे पे जरा मुस्कान लाइए, मुस्कान जो जाए कान तक, और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन मिर्ची।

0: 70s 80s में कादर खान साहब और अमिताभ बच्चन साहब का प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिश्ता काफी सॉर्टेड था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये कैसे बिगड़ा, सुनिए इस बारे में कादर खान साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: हाँ, उसके भी कई वजूहात हैं सर। क्या है कि इलेक्शन में गए, एमपी बने, दुनिया भर का हंगामा हुआ। हम एमपी बन के जब ये आए, अंदाज बदल गए थे सर। मुझसे मेरे प्रोड्यूसर ने पूछा कि आप सर जी को मिला? बोला कौन सर जी? बच्चन साहब। बोला यार सर जी कहेगा, मैं तो अमित बोलता हूँ उसको। बोलना नहीं, he doesn't like it, को सर जी बोलना। एक आदमी ने मुझे सिर्फ इसलिए अवॉइड किया कि मैं उन्हें सर जी नहीं कहता, और मैंने सर जी उनको इसलिए नहीं कहा कि मैंने उनको हमेशा अमित बोला है, और मैंने हमेशा उनके कहने पर फिल्में छोड़ छोड़ के दूसरी फिल्में की हैं। यहाँ से जो है वो गाड़ी दो ट्रैक पे चली गई, वो सर जी थे, मैं कादर जी था। जी ने नहीं माना कि मैं उनको सर जी कहूँ। अपनी थोड़ी अना भी होती है, अपना कुछ वकार भी होता है, तो बात नहीं बनी सर, बस खत्म हो गई कहानी।
0: Really sad to hear. वैसे ये सरजी और पॉलिटिक्स वाली लाइफ बच्चन साहब को ज्यादा देर रास नहीं आई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: ते

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर

0: गली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लिनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me please,
0: my name is Anthony Gonsalves.
2: How cute,
0: right?

0: चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldie?
2: No. Anthony Gonsalves.
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves.
3: तो ये जो एंथनी गोंसाल्विस हैं, ये जो नाम है, ये एक्चुअली एक पर्सन थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। अमर अकबर एंथनी का ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का कॉम्पोजिशन। तो प्यारेलाल जी जो थे, उनके एक म्यूजिक टीचर थे जिनका नाम एंथनी गोंसाल्विस था। एक्चुअली ये एंथनी सर 1950s-60s के म्यूजिक अरेंजमेंट सीन में काफी पॉपुलर थे और काफी म्यूजिशियंस को इन्होंने म्यूजिक सिखाया है, इंक्लूडिंग प्यारेलाल जी एंड आरडी बर्मन एज वेल। तो उनके नाम पर ये जो गाना बनाया गया है, इट इज अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट एज वेल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.ch

पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

यार ये पिक्चर देख के ना मैं डिप्रेस हो गई थी। हीरा पन्ना मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो इसमें हीरा प्ले करते हैं देवानंद साहब और उनकी गर्लफ्रेंड होती है राखी गुलजार जो एक एक्सीडेंट में मारी जाती है। फिर हीरा की लाइफ में आती है पन्ना प्लेड बाय जीनत अमान जो राखी गुलजार की सिस्टर का रोल प्ले करती है। एंड में उनको भी मार दिया जाता है, हीरा अकेला रह जाता है। मतलब क्या जरूरत होती है अच्छी वाली पिक्चर में लोगों को मारने की। शोले में भी अमिताभ बच्चन साहब के किरदार को मार दिया, क्या जरूरत थी जय को मारने की। अच्छा वाला वो पुल पे गब्बर के आदमियों से लड़ रहा था, लड़ता रहता, वो थोड़ी देर में वीरू आ जाता, दोनों भाई मिलके गब्बर के मुस्टंडों को सेट कर देते, हम नहीं खेलते। मैं नहीं देखती अब शोले, ना मैं हीरा पन्ना देखूंगी। एनीवे गाना सुनते हैं लहू के दो रंग, ये अच्छी है। इसमें दोनों भाई मिलके विनोद खन्ना और डैनी एंड में मिलके गुंडों को मारते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1985 की मूवी अर्जुन का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आई जस्ट लव दिस फिल्म। अगर आपने लाइफ में ये मूवी नहीं देखी है प्लीज देखो, ये हिंदी फिल्मों में एक लैंडमार्क मूवी है। रिटन बाय जावेद अख्तर साहब एंड डायरेक्टेड बाय राहुल रवेल। ये सनी देओल की पहली एक्शन मूवी इसे हम बोल सकते हैं। और सिर्फ सनी देओल नहीं, बहुत सारे एक्टर्स की ये शुरुआती फिल्मों में से है, यू नो एक्टर्स लाइक अनुपम खेर, परेश रावल। और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना कि ये ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, यू नो नॉर्मल शरीफ शरारती यंगस्टर्स जैसे होते हैं, वो कैसे फाइट करते हैं इनजस्टिस करप्शन के अगेंस्ट। और इसका जो म्यूजिक है, खास करके बैकग्राउंड म्यूजिक जो एक्शन सीन्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्या कंपोज किया है आर डी बर्मन साहब ने, वो म्यूजिक को बहुत सारी एक्शन फिल्म्स में यूज किया गया है। इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म 1985 की अर्जुन। और अभी चलिए मार धाड़ वायलेंस डिशुम डिशुम से थोड़ा हटके लव इश्क प्यार मोहब्बत वाला गाना सुनते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची

0: Mirchi, it's hot.
1: Purani jeans with Charu, only on Mirchi.

0: मुझे ना 1981 की याराना फिल्म का एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।
0: आप कहेंगे कौन सा, तो हम कहेंगे वो कि जिसमें अमिताभ बच्चन जो ऐसे गांव के रहते हैं उनको शहर आके लिखना पढ़ना सिखाया जा रहा होता है। सुनिए।
2: जिंदगी सोज बने ताज ना होने पाए ताजे दिल, जब भी बने आवाज ना होने पाए।
3: तौबा क्या कर रहे हो तुम?
2: क्या
3: ऐसे नहीं ऐसे, जिंदगी सोज बने साज ना होने पाए और साज दिल जब भी बजे आवाज ना होने पाए।
2: बराबर
3: बराबर नहीं, तुम पढ़ो।
2: जिंदगी सोज बने,
3: जिंदगी नहीं जिंदगी।
2: हाँ वही तो कहते हैं। जिंदगी सोज बने,
3: जिंदगी नहीं जिंदगी।
2: जिंदगी सोज बने
3: जिंदगी।
0: इसके बाद भी उनको बोलना नहीं आता और पलट के वो मास्टर जी को बोलने पे लगा देते हैं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आपने मूवी देखी है तो आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ। कभी नहीं देखी और देखें तो ये सीन ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: जब जंजीर फिल्म बन रही थी तो इतने सारे एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स थे, लेकिन न्यू कमर अमिताभ बच्चन को क्यों कास्ट किया गया? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक इंटरव्यू में राइटर सलीम खान साहब, सलीम खान साहब जावेद अख्तर साहब ने फिल्म लिखी थी ना, तो सलीम खान साहब से एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था, सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: उसमें उनकी डेस्टिनी का भी बहुत हाथ है, वही एक स्क्रिप्ट थी जो कंप्लीट थी डायलॉग के साथ साथ ऑलमोस्ट, तो वो जिन लोगों को सुनाई जैसे धर्मेंद्र साहब माइंड में थे तो उन्होंने किसी वजह से नहीं की, उनको हमेशा अफसोस भी रहा इसका। देव साहब ने क्या उनके रीजन थे वो पता नहीं लगे, उन्होंने स्पीच सुना और फिर मुझे मौका मिला दिलीप साहब से इंटरव्यू करने का, तो मैंने दिलीप साहब से पूछा कि आपने बहुत सी पिक्चरें की हैं, ऐसी भी कुछ पिक्चरें हैं कि आपने छोड़ी हों और आपको अफसोस हुआ हो कि ये मुझे करना चाहिए?
0: जी, दिलीप कुमार साहब को भी ये रोल ना करने का अफसोस था और राजकुमार साहब को भी ये फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन वो भी किन्हीं वजह से नहीं कर पाए। खैर, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, फिल्म फिल्म पे लिखा होता है उसमें रोल निभाने वाले का नाम। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: 1970 की फिल्म आनंद आश्रम का ये गाना, जिसे श्यामल मित्रा ने कंपोज किया है, आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज, लिखा है इंदिवर ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इंदिवर साहब ने ना इस फिल्म के लिए एक और गाना लिखा था, जो फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंता जी ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको उसके बोल कुछ खास पसंद नहीं आए। लेकिन ये बोल फिर 10 साल बाद फिरोज खान साहब को बहुत पसंद आए और उन बोलों पे कुर्बानी फिल्म का ये गाना बना। कल्याण जी आनंद जी का कॉम्पोजिशन, इसे गाया है कंचन, मनहर और आनंद ने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।
1: हम

0: आपको पता है इस कॉलेज के एक लड़के और लड़की में, you know what I mean?
1: My goodness, कौन है वो? क्या नाम है उनका?
0: तुमको बता देता हूँ, लेकिन देखो यानी समझी।
1: ओफो, हद है, कान में बोलो।

मजेदार सा गाना 1982 की फिल्म साथ साथ का है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसमें एक्चुअली सिंगर्स बहुत सारे हैं जिनको क्रेडिट दिया गया है, वो है अशोक खोसला, मुरलीधर, पुष्पा, और इसका वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो उसमें जो जो एक्टर्स हैं उनकी आवाजें भी हैं। इसे कंपोज किया है कुलदीप सिंह ने और लिखा है जावेद अख्तर साहब ने। इनफैक्ट जावेद अख्तर साहब ने ना इस फिल्म के गाने ऐसे फ्री में लिख दिए थे, बिकॉज ये ऐसी स्मॉल बजट फिल्म थी, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी गरीब सी फिल्म थी। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो एक्चुअली यश चोपड़ा साहब से एसोसिएटेड थे पहले, तो उस वजह से जावेद अख्तर साहब उन्हें जानते थे और इस तरह से इस फिल्म के गाने लिखे गए। और लव इश्क प्यार मोहब्बत वाला एक और क्यूट सा गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: 98.3 98.3 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

1973 में बॉबी फिल्म के बाद ऋषि कपूर साहब की दूसरी फिल्म थी 1974 की जहरीला इंसान। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और उसका एक गाना था जो ऋषि कपूर साहब ऐसे शिद्दत से चाहते थे कि शैलेंद्र सिंह सिंगर जो थे वो गाए, क्योंकि इस बॉबी फिल्म में भी उनके सारे गाने शैलेंद्र सिंह ने गाए थे। लेकिन तब वो ऐसे नए नए नन्हे मुन्ने से थे ना, उनकी बात ज्यादा सुनी नहीं गई, एंड आर डी बर्मन चोज किशोर कुमार टू सिंग दैट सॉन्ग। तो सुन लेते हैं ये गाना, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: ये उन दिनों की बात है जब सनी देओल का हाथ 2.5 ग्राम का हुआ करता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी ये लेट 70s या अर्ली 80s की बात होगी जब धर्मेंद्र साहब ने सनी देओल को लंदन भेज दिया था। ऐसा क्यों हुआ था, सुनिए एक इंटरव्यू में सनी देओल ने क्या शेयर किया था।
1: वो समय था जब मैंने डिसाइड किया था मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उसके पहले सिर्फ शरारते करता था, तब मैंने सीरियस हुआ कि मैं हैव टू डू समथिंग। और फिर तब मैंने सोचा कि मैं यहाँ इंडिया में कुछ करना चाहूँगा तो सही ढंग से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पूरी स्कूलिंग में एक प्रॉब्लम रही है कि जहाँ भी जाते हैं या तो अच्छी तरह से लोग बिहेव करते हैं या बुरी तरह से, तो इन बिटवीन आदमी एक अपनी आइडेंटिटी के साथ कुछ नहीं कर पाता। तो उस वजह से फिर मैंने कहा मैं इंग्लैंड जाऊँगा, वहाँ जाके ड्रामा स्कूल ज्वाइन करूँगा ताकि मैं अपने आप को डिस्कवर करूँ और जो मैं करना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करूँ।
0: तो 1983 में बेताब के डेब्यू के लिए सारी तैयारियां हो रही थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची के साथ
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

मुझको अपना मुंतजर ही पाओगे, देखना कैसे पिघलते जाओगे जब मेरी आगोश में तुम आओगे। हश्र के दिन की तो छोड़ो हश्र पर, उम्र भर ये खौफ क्यों कर खाओगे। वक्त जाके फिर आता नहीं, वक्त को वापस कहां से लाओगे। जी बिल्कुल, वक्त बिताना है अपने लव्ड वंस के साथ, कोई दूरी मजबूरी नाराजगी उसको दूर करने की कोशिश करनी है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

हाँ, ये गाना सुन के कुछ लाइंस याद आ गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आजिम कोहली नाम के शायर हैं, इनकी लाइंस हैं, वो चाहने वाले जो दूर दूर रहते हैं मिलते नहीं हैं, उनके लिए कहा है कि जब कभी तुम मेरी जानिब आओगे, मेरी जानिब मेरी तरफ, जब कभी तुम मेरी जानिब आओगे मुझको अपना मुंतजिर ही पाओगे। मुंतजिर मतलब इंतजार करने वाला। जब कभी तुम मेरी जानिब आओगे

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं।
2: श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, और भाई जब फ्राइडे को एक नहीं दो नहीं बट चार चार अच्छी फिल्में रिलीज हो रही हूँ तो आपका दिमाग कंफ्यूजन में ही फंस जाता है। सो बेसिकली इस फ्राइडे सबसे पहले तो आई एम एक्साइटेड अबाउट मैं वापस आऊंगा दिस अपकमिंग मूवी जिसको डायरेक्ट किया है इम्तियाज अली ने, और इसमें वेदांग रायना के साथ साथ दिलजीत दोसांझ और शर्वरी लीड रोल्स निभाते नजर आएंगे। द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड पार्टीशन के टाइम का प्यार। मूविंग ऑन द सेकंड मूवी दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट इज भारत भाग्य विधाता। ओके कंगना रनौत स्टारर ये फिल्म है, बट प्लीज इस बंदी को लेके जो परसेप्शन सेट कर लिया है आपने अपने दिमाग में उस बेसिस पे कहानी को जज ना करें इज माय रिक्वेस्ट। तो थिएटर जाके मैं इस फिल्म को देखने की कोशिश करूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि आपको जाना चाहिए या नहीं। मूविंग ऑन नंबर 3 पे है गवर्नर। मनोज बाजपेयी स्टार कर रहे हैं इस फिल्म में एज अ गवर्नर, और यहाँ पे कहानी है इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस इन द 1990s। एंड फाइनली नंबर 4 पे विक्रम भट्ट डायरेक्टोरियल अपकमिंग फिल्म हॉन्टेड 3D। देखो भाई जिस हिसाब की हॉरर फिल्में बॉलीवुड की तरफ से आ रही हैं, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस वन, बट अगर आप देखें तो जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। सिर्फ मैं ही रिव्यू देने के लिए थोड़ी बैठी हूँ, थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए यार। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड इट्स ऑल।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: यार बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: यार 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.